0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय VC प्रमोद।

और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावे, यही मेरा उद्देश्य है। श्री राम लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्री ने राजा को उठा कर दिखाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अतुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख जारी है। श्री राम बोले, सीता प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा, मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुन लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और इसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान ये तेरी कैसी लीला है।

0: আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা। পরবর্তী অনুষ্ঠান দিল্লি কেন্দ্র থেকে সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीयरक्षा अलङ्करणसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां, केन्द्रीयसशस्त्र आरक्षकबलानां, केन्द्रशासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां, केन्द्रीयसशस्त्र आरक्षिबलानां,

0: को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets or public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर

0: पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7

0: हजार करोड़ का खर्च तो मात्र इन चार सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर

0: पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow,

ये है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में अभी समय हो चला है 9:11 और आपके साथ इस सफर में है आपकी रेडियो दोस्त लक्ष्मा पर्वत। कार्यक्रम आपका ही पसंदीदा रसदारा भाव प्रधान बातों और गीतों का कार्यक्रम है और आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत खैर मकदम और वेलकम करती हूँ।

इस गीत को आपने सुना फिल्म जो जीता वही सिकंदर से साधना सरगम, उदित नारायण और जतिन ललित की आवाज में। और चलिए एक और गाना सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे साझा करूंगी कि आज किस विषय पर कार्यक्रम लेकर आई हूं मैं।

आज जिस विषय पर बहुत सारी बातें आपसे साझा करूंगी वो है अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान प्रदर्शनी। और अब अगला गीत आप सभी के लिए चांद सिफारिश

अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान प्रदर्शनी, ब्रह्मांड, तारों, ग्रहों और अंतरिक्ष अन्वेषण की जानकारी देने वाले अंतरिक्ष विज्ञान के केंद्र होते हैं। ये खगोल विज्ञान मशीनों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की प्रगति को दर्शाते हैं। बात करूं अगर तारा मंडल प्लैनेटेरियम की, तो यहाँ गुंबद के आकार की स्क्रीन पर रात के जो तारे हैं, आकाश गंगा और ग्रहों की यात्रा का 3D 360 डिग्री अनुभव दिया जाता है। ऑब्जर्वेटरी, इसमें लगे हुए हाई पावर टेलीस्कोप सोलर और ऑप्टिकल से सूर्य के धब्बे और दूर के ग्रहों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंतरिक्ष यान और रॉकेट मॉडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ऐतिहासिक और आगामी मिशनों जैसे चंद्र ग्रहण और मंगल यान के सटीक स्केल किए गए हुए मॉडल प्रदर्शित किए जाते हैं। और फिलहाल अगला गाना, जी हाँ, कुछ तारे आसमान में होते हैं लेकिन कुछ तारे जमीन पर होते हैं। अगला गाना फिल्म तारे जमीन से, जमीन पर।

स्टूडियो की घड़ी में समय चला है 9:36 और इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल यानी मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं और फिलहाल आप सुन रहे कार्यक्रम रसधारा अपनी रेडियो 2 सुलक्षणा पर्वत के संग। और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे और क्या और उससे जुड़ी मतलब कि अंतरिक्ष एवं खगोलीय विज्ञान प्रदर्शनी से जुड़ी बातें। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए फिल्म सितारे

भारत में खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने वाली प्रदर्शनियां, तारामंडल और अंतरिक्ष दीर्घाएं प्रमुख रूप से प्रमुख विज्ञान संग्रहालय और अनुसंधान संस्थानों और वेदशालाओं में आयोजित की जाती है। देश के प्रमुख शहरों में जहां स्थायी और अस्थायी खगोलीय प्रदर्शनियां होती हैं, और उसके बारे में थोड़ा आगे बताना चाहूंगी। प्रमुख विज्ञान केंद्र और तारा मंडल अहमदाबाद गुजरात साइंस सिटी में स्थित एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी, कोलकाता में बिरला उद्योग औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय BITM और मध्य प्रदेश बिरला तारामंडल, नई दिल्ली नेहरू तारामंडल नेहरू प्लैनेटेरियम और राष्ट्र विज्ञान केंद्र बेंगलुरु जवाहरलाल नेहरू तारामंडल यहां नियमित रूप से खगोलीय प्रदर्शनी और विज्ञान पार्क स्थित है। मुंबई की बात करूं तो नेहरू सेंटर और तारामंडल प्रमुख अनुसंधान केंद्र और वेदशालाएं, ऑब्जर्वेटरी की बात करूं तो लद्दाख हनले ऑब्जर्वेटरी ओपन ले लद्दाख भारतीय खगोलीय वेदशाला IAO ये विश्व की सबसे ऊंची वेदशालाओं

में से एक है। उदयपुर 4.4, ऑब्जर्वेटरी ओपन उदयपुर राजस्थान, फतेह सागर झील के द्वीप पर स्थित उदयपुर और वैधशाला, सौर्य भौतिकी पर केंद्रित तमिलनाडु कावलूर, रिसर्च इंस्टीट्यूट क्लोज्ड बी बापू। और क्या है कि इन जगहों पे आपको जरूरत पड़ती है टेलीस्कोप की, क्योंकि आसमान को अगर झांकना हो, निहारना हो, समझना हो, बूझना हो, तो टेलीस्कोप की जरूरत तो पड़ेगी ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए स्वदेश फिल्म से उदित नारायण और हरिहरन की आवाज में सुनाते हैं ये गीत।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 9:54 और 32 सेकंड और थोड़ी देर में कार्यक्रम रसधारा को विराम देना पड़ेगा और चलते चलते आप सभी के लिए आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत वो गाना प्ले करना चाहेगी जिसे वो ली है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में इस गीत को आप सुनेंगे। अनिल पांडे ने इस गीत को कलमबद्ध किया है और संदेश शांडिल्य ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को, फिर मुलाकात होगी आपसे 12 बजे, दिन के 12 बजे लेकर आऊंगी कार्यक्रम सुरभि। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति

0: कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July 2026, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. The Chief Minister announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the State Cabinet meeting on July 2nd. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects including marriage, divorce and adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tribute to the heroes of the Santal Hul on the occasion of Hul Day. In a social media post, Mr. Birla remembered the immortal martyrs who made the supreme sacrifice for India's independence, tribal identity and social justice. He also paid homage to thousands of brave tribal men and women who, under the leadership of Sidho and Kanhu, launched the historic Santal Hul against colonial rule, exploitation and injustice. Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to all elected representatives on International Day of Parliamentarism and to democracy associations across the world. In a social media post, Mr. Birla said that Parliament is the supreme expression of the people's aspirations, rights and trust, where ideas are churned, policies are crafted and the direction of the nation's future is determined. Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road tax. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs, whilst

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16:19 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इशारा है हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का और साथ है आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन। और एक बार फिर आप सबो को मेरा प्यार भरा आदाब। तेरी आंखों की सहूलत मैसर हो जिसे, तेरी आंखों की सहूलत मैसर हो जिसे, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा। या दोस्तों, जब महबूब इतना खूबसूरत हो और तो फिर और दुनिया की कोई भी शय जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का और देखते हैं कि आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। दोस्तों, आज 30 जून है और आज ही के दिन 1908 में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने करारदाद मंजूर की जिसमें 30 जून को बैन अक़्वामी सियारचे का दिन करार किया गया ताकि हर साल 30 जून को 1908 को रूसी फेडरेशन के साइबेरिया टंगोसा के असरात की बरसी को बैन अक़्वामी सतह पर मनाया जाए और आवाम में इसके असरात के बारे में शऊर बेदार किया जा सके। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे का मकसद किशोदर ग्रह के असरात के खतरे के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना और ज़मीन के करीब किसी काबिल एतबार चीज़ के खतरे की सूरत में आलमी सतह पर उठाए जाने वाले बहरानी मवासलाती इकदाम के बारे में अवाम को आगाह करना है। इस इकदाम का मकसद ज़मीन के करीब अशिया से मुमकिन खतरात को कम करने में बैरूनी खला के पुरमन इस्तेमाल से मुतल्लिक कमेटी की बाहिमी तावुन को कोशिशों को उजागर करना है जबकि आलमी तालमी मुहिम का मौका भी फराहम करना है। तो हम किशोदर ग्रह के असरात के खतरात के बारे में अवामी बेदारी बढ़ाने और ज़मीन को मुमकिन तौर पर तबाहकुन ज़मीन के करीब अशिया से बचाने के लिए दरकार साइंसी तकनीकी और आलमी बहरान से निपटने की कोशिशों को उजागर करने के लिए बैन अक़्वामी सियारचे का दिन मनाते हैं। यह दिन बैन अक़्वामी तावन के और हमारे सियारे से टकराने से पहले खलाई चट्टानों का पता लगाने, ट्रैक करने और मुमकिन तौर पर उनको हटाने के लिए दरकार टेक्नोलॉजीज पर रोशनी डालता है। यह आलमी साइंसी मुताला की हौसला अफजाई करती है और अवाम को हमारे निज़ामी शमसी की इब्तिदा और मुख्तलिफ आसमानी अजसाम के दरमियान फ़र्क के बारे में तालीम देती है। आज दुनिया भर में सियारचों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद इस कर्रे अर्ज के मकीनों को आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब और सियारचों से फैलने वाली तबाही से बचने के लिए तैयार करना है। याद रहे कि ज़मीन माजी में एक सियारचे के टकराने से अपनी 75% हयात से महरूम हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था आज का आईना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज के प्रोग्राम का पहला नगमा, निहायत ही रोमानी नगमा मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। जी हाँ दोस्तों, कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो ता उम्र याद रहते हैं और वक्त की जितनी भी गर्द पड़ जाए लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी ताजगी हमेशा बरकरार है। सुनते हैं साहिल लुधियानवी के कलाम को मौसीकी जयदेव की फिल्म का नाम हम दोनों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका दिल अभी नहीं भरा है। दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन, और फिलहाल वक्त हो रहा है मंजरनामे का। और आप सब जानते हैं कि हर महीने की आखिरी मंगल को हम आपके लिए सेहत से जुड़े मौजूदात को लेकर आते हैं, हिफ्सानी सेहत। और आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे डेंगू पर। दोस्तों मौसम बदल गया है, मानसून की आमद हो गई है, और मानसून आते ही जहां चार जानिब बारिश और निखरा निखरा मौसम होता है, वहीं इस मौसम में जमा पानी में डेंगू का मच्छर भी पैदा होता है। वैसे तो डेंगू आमतौर पर मलेरिया के घराने से की होने की वजह से इतनी तवज्जो का हामिल नहीं होता, लेकिन ये गलत सोच है। डेंगू एक खतरनाक मगर काबिले बचाव बीमारी है। सफाई, एहतियात और हर वक्त इलाज के जरिए इससे महफूज रखा जा सकता है। आवाम में आगाही पैदा करना और साफ माहौल बरकरार रखना डेंगू की खात्मे के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों डेंगू एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। ये बीमारी खास तौर पर एडीज मच्छर अमूमन साफ पानी में पैदा होते हैं और ज्यादातर दिन के वक्त इसके मच्छर काटते हैं। डेंगू बुखार मच्छर से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। ये दुनिया के जिली अशगमंदी यानी नशीबी इलाकों में होता है। ये मादा के काटने से होता है, यानी ये मादा मच्छर के काटने से होता है। एडिस मच्छरों की नस्ल ये तब होता है जब मच्छर किसी मुतासर फर्द को काटता है और फिर वायरस ले जाने के दौरान गैर मुतासर फर्द को भी काटता है। डेंगू बुखार के बारे में अगर जानना चाहें तो ये मगरबी बहरुल काहिल के जजायर और जनूबी मशरकी एशियाई खत्ते के जेली अशकबंदी ममालिक में पाया जाता है। ये कैरेबियन के साथ लातिनी अमरीकी ममालिक में भी फैल रहा है। डेंगू बुखार हो सकता है, तेज बुखार और फ्लू जैसी अलामत डेंगू बुखार की शक्ल ले लेती है, जिसे डेंगू हेमरजिक फीवर भी कहा जाता है। शदीद खून बहने और ब्लड प्रेशर में अचानक कमी और यहाँ तक कि ये मौत का सबब भी बन सकता है। दोस्तों अलामत तौर पर मच्छर के काटने के 4 से 7 दिनों के बाद इसकी अलामतें नजर आती हैं और ये 10 दिन तक रह सकती है। बच्चों और नौमरों में अलामत के हमेशा नहीं देखी जाती है, खासतौर पर हल्के इन्फेक्शन की सूरत में ये नहीं पता चलता। दोस्तों इस बीमारी में बुखार 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये अचानक भी हो सकता है और शदीद दर्द, मतली कै जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द यानी जोड़ों में दर्द, गुद्दों में सूजन, नाक के मसूड़ों से खून बहना वगैरह शामिल है। कभी कभी पूरे जिस्म में रैशेस निकल जाते हैं। जिल्द पर आसानी से खराशें, बाज़ औक़ात जिल्द के नीचे बारीक रगे खराश की तरह नमूदार होती है। ये बगैर किसी सदमे के हो सकता है। आंखों की कोरों यानी बालों के पीछे दर्द होता है और बच्चों और छोटे बालिगों में इन्फेक्शन ज्यादातर हल्का रहता है और अलामत अक्सर वायरल फ्लूज के साथ साथ उलझ जाते हैं। ये खुद ही गायब भी हो जाता है और ये भी हल्का भी होता है और जब फर्द जिंदगी में पहली बार मुतासर होता है। डेंगू बुखार बड़े बच्चों और बड़ों में शदीद पेचीदगियां पैदा करता है। इसे डेंगू हेमरजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर इसकी अलामतों पर जिक्र किया जाए तो इसके आने से तेज बुखार, खून की नालियों को नुकसान पहुंचा, खून की नालियों से खून का खराज, कै पेशाब और पायखाना में खून, खून के प्लेटलेट की तादाद में हद दर्जा कमी, जिगर का बढ़ जाना यानी लीवर प्रॉब्लम, पेट में शदीद दर्द, सर्द और पीला नजर आने वाली जल्द, नाक और मसूड़ों से खून बहना, गर्दिशी निजाम की खराबी, चिड़चिड़ापन और बेचैन रहना, सांस लेने में दुश्वारी, तेजी से सांस लेने की बाज बनती है। अलामत बड़े पैमाने पर खून बहने और मौत तक बढ़ सकती है। अगर आपको ये अलामत नजर आ रही है तो सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करें और डेंगू का टेस्ट करवाएं। अगर आपको शदीद पेट में दर्द है, सांस लेने में दुश्वारी है, कै या खून बहना जैसी कोई भी शदीद अलामत नजर आए तो सबसे पहले हंगामी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं।
इसके अलावा अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहां डेंगू फैली हुई है या आपने हाल ही में किसी ऐसे इलाके का दौरा किया है तो इन अलामत पर नजर रखें। अगर आपको डेंगू की शुबा महसूस हो सकती है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, डेंगू बुखार की वजह से इसकी जो वजह है वो है डेंगू वायरस। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के चार अक्साम में से किसी एक की वजह से होता है जो मच्छर के काटने से मरीज में मुंतकल होता है। खातून एडिस मच्छर वायरस के लिए एक वेक्टर के तौर पर काम करता है और इन्हें मुतासरा फर्द से सेहतमंद फर्द तक ले जाते हैं। अगर किसी को पहले से डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है तो दूसरी बार इन्फेक्शन होने की सूरत में उनके अंदर शदीद पेचीदगियां पैदा हो सकती है। जिंदगी भर में इन्फेक्शन की तादाद जितनी ज्यादा होगी शदीद पेचीदगियों के अमकान उतने ही ज्यादा होंगे। इस बीमारी का कोई खास एंटीवायरल इलाज नहीं है, सिर्फ अलामती मावन है, लेकिन इसे हासिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जिस्म आमतौर पर डेंगू के असरात से कमजोर होता है और इसे मुकम्मल सेहतियाब होने और पेचीदगियों से जहूर को रोकने के लिए मदद की जरूरत है। डेंगू से एक वैक्सीन को अभी तक मंजूरी दी गई है लेकिन हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में अभी तक से इसकी आमद नहीं हुई है। फिलहाल डेंगू बुखार की कोई दूसरी वैक्सीन मौजूद नहीं है। डेंगू से बचने के लिए आमतौर पर हमें सूती के कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए और ऐसे कपड़े पहने जो पूरे ढके हुए हों, बिलखसूस हाथ पांव ढका हो। याद रहे ये मच्छर दिन के औकात में ज्यादा काटते हैं। अपने घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खिड़कियों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करें जो मच्छर को रोकते हैं। डेंगू बुखार एक वायरस की वजह से होता है और शदीद डेंगू बुखार जानलेवा है, इसलिए कभी कभी अस्पताल में दाखिल करने की भी जरूरत नौबत होती है। इसके लिए जरूरी है कि बेदार रहने के लिए और ऐसे मरीज को ज्यादा से ज्यादा रकीक का इस्तेमाल करना चाहिए यानी लिक्विड पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस्म की पानी कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें और बुखार आते ही सबसे पहला काम अपनी जाँच करवाना है। तो दोस्तों, ये था हिफ्ज़ानी सेहत जहां हमने बात की डेंगू मर्ज पर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मुकेश की आवाज में एक नहायत ही हसीन सा कलाम साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ मौसीकी खयाम और जिसे गाया है मुकेश ने। फिल्म का नाम कभी कभी।

मेरे पाँव नाजुक ना लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ जल के। दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:38 हुए हैं। और आज दिन है मंगल और आज

कामयाबी की वजह से आने वाली नई नस्लों को करियर के इंतखाब में हद दर्जा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में एक प्रोफेशन ऐसा है जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग पर। ग्राफिक डिजाइन बसरी और मतनी मवाद के साथ ख्यालात की मंसूबाबंदी और पेश करने का फन और मश्क है। ये पैगामात को वाजह तौर पर पहुंचाने के लिए एक टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, इमेजरी और तरतीब को यकजा करता है। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग से लेकर डिजिटल इश्तिहारत तक के मकासद को पूरा करता है। चाहे आप एक फेवरेट फोलियो बनाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हों या बुनियादी महारतों में महारत हासिल करना चाहते हों, फील्ड को मुख्तलिफ किस्म के खसूसी टूल्स और तालीमी वसाइल की मदद से ताबुन किया जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन, कलर थ्योरी, डिज़ाइन रिव्यू, तख्लीकी सलाहियत यानी आपके अंदर कितनी सलाहियत है और कितना आप सोच सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी है, तस्वराती डिज़ाइन, एडोब फोटोशॉप, ग्राफिक और बसरी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, बसरी कहानी सुनाने, डिज़ाइन के अनासर और असूल, तस्वीरी तज़िया, डिज़ाइन की हिकमत अमली, बसरी डिज़ाइन तख्लीकी डिज़ाइन, ग्राफिक और बसरी डिज़ाइन तख्लीकी सोच, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वगैरह शामिल है। ग्राफिक डिज़ाइन बसरी असासे बनाने के लिए डिज़ाइन अनासर का इस्तेमाल करता है जो कंपनियों को सामिन के साथ जुड़ने और बातचीत करने में मदद करता है। ये असासे छोटे हो सकते हैं जैसे कंपनी का लोगो या ऐप आइकॉन, या बड़ा जैसे वेबसाइट पर या प्रिंट इश्तिहार। एक ग्राफिक डिज़ाइनर का मकसद मुख्तलिफ फनकाराना अनासर और शक्लों जैसे प्रिंट और डिजिटल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सार्फिन के जज्बात को मुतासर करता है। इस जज्बाती ताल्लुक की वजह से जो ग्राफिक डिज़ाइन का मकसद सामिन के साथ कायम करना है, जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो डिज़ाइन के कलीदी अनासर को बुनियादी समझ रखते हैं। सबसे पहले दर्जा बंदी, एक बहुत मसरूफ डिज़ाइन सामिन के लिए एक अहम अनासर पर अपनी तवज्जो को मरकूज करना मुश्किल बना देगा। दर्जा बंदी को समझने से पहले आपको एक ऐसा डिज़ाइन बनाने की मदद मिलेगी जिसमें सबसे अहम टुकड़ों पर तवज्जो दी जाएगी। मिसाल के तौर पर आप कलीदी पैगाम को नुमाया करने के लिए एक बड़ा फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तवाजुन बरकरार रखना है। यानी ग्राफिक डिज़ाइन के मौजू पर अगर आप लफ्ज़ वजन सुनेंगे, मुख्तलिफ सतहों की अहमियत को पहुँचाने और डिज़ाइन को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए डिज़ाइन में कलीदी अनासर का वजन मुख्तलिफ होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक डिज़ाइन में कुदरती तौर पर खाली अनासर शामिल होंगे, क्योंकि अगर आप दिए गए लैंडस्केप के हर टुकड़े को भरते हैं तो ये मुमकिन तौर पर आपके सामीन को मगलूब कर देगा। रंगों का इंतखाब, ग्राफिक डिज़ाइन करियर में मुख्तलिफ डिज़ाइन अनासर के जरिए ख्यालात को बातचीत करने के लिए आर्ट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर आप इश्तिहारात, ब्रोशर्स, पोस्टर्स और रसालों के लिए मजमू तरतीब और प्रोडक्शन डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इस काम के लिए आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी रब्ता कर सकते हैं। कई कंपनियां ऐसी होती है मीडिया हाउस में जहां इसकी बहुत ज़रूरत होती है, और इन दिनों इसका चलन बहुत आम हो गया है। जब आप एक डिज़ाइन शुरू करते तो आप आमतौर पर हाथ या कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरह की अक्कासी के साथ शुरू करेंगे। बहुत से डिज़ाइनर क्लाइंट्स के लिए एक प्रोसेस बुक बनाते हैं ताकि किसी डिज़ाइन प्रोजेक्ट के अमल को शुरू किया जा सके। कई इश्तिहारी कंपनियों में इस पेशे की गुंजाइश होती है और ऐसे लोगों को लिया भी जाता है। तो दोस्तों, ये था रोजगार के मौके के तहत हमने बात की ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:42 और 46 सेकंड हुए हैं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि फिलहाल आपका दिल कर रहा है कि कोई अच्छी से प्यारा सा नगमा सुने, तो देर किस बात की, मौका है और मुनासिबत भी है, माहौल भी है। तो सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम कलाकार, जिसे लिखा है इंदिवर और मनोज कुमार ने, मौसिकी है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म गाने के बोल है।

दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से मॉनसून शुरू हो चुकी है और बारिश कहीं ना कहीं कुछ खास मौसम में कुछ खास लोगों की याद जरूर सताती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म दिल से महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण की आवाज़ में गुलजार का कलाम और मौसीकी ए आर रहमान की।

0: दोस्तों सुनते हैं आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा, जो एक एल्बम सॉन्ग है जिसे गाया है विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने, कलाम कुणाल वर्मा और मौसीकी है जावेद मोहसिन की। लेकिन ये नगमा क्यों अहम बनता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जिहाले मिस्कीन। जी हाँ दोस्तों, जिहाले मिस्कीन ये आमिर खुसरो के लिखा हुआ कलाम है, वहीं से ये लिया गया है। और इस जिहाल के माने होते हैं सूरत हाल, हालात पर, मिस्कीन यानी गरीबी, मकून मतलब कहीं नहीं, रंजिश यानी गुस्सा। दरअसल इस लाइन को लिखने के पीछे मकसद, शायर कह रहा है कि मेरी बुरी हालत पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दे, मेरी हालत तो बहुत बुरी हो रही है, मेरे दिल देखो, मेरी हालत देखो कि मैं इस जुदाई का असर मेरे मुझ पर कितना हुआ है कि मैं भी बेहाल हूँ, मेरी भी हालत बहुत खराब है, बहुत बिगड़ी हुई है। तो चलिए सुनते हैं विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल को।
1: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
2: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

0: तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।
2: तो संजय मैंने वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। मैं तलत सलाहुद्दीन आज के लिए इजाजत लेती हूँ। मैं फिर हाजिर हूँ कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। ये आकाशवाणी कोलकाता का संजयिता चैनल है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे वेस्टर्न प्रोग्राम और साथ होंगी संजुक्ता नंदी।

ये है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अभी दिन के 12 बजे हैं और ये समय होता है आपके उस पसंदीदा हिंदी दैनिक पत्रिका कार्यक्रम का जिसका नाम है सुरभि। तो सुरभि लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत और इसी के साथ आप सभी का स्वागत करती है इस कार्यक्रम में। आगाज करना चाहूंगी उस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म चलते चलते से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

चलिए दोस्तों बता दूं कि आज जो चर्चा है का पहला विषय है वो है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी को एस्ट्रॉयड के संभावित खतरों से बचाना और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2026 के लिए इसका मुख्य विषय है ग्रह रक्षा और क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे, प्लैनेटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हैजर्ड्स है। मनाने का कारण ये दिन 1908 में साइबेरिया में हुई विनाशकारी तुंगुस्का घटना की याद में मनाया जाता है और इसकी घोषणा दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में घोषित किया था।

और अब चर्चा है का जो दूसरा विषय है, टॉपिक है, वो है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे। विश्व सोशल मीडिया डे हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत टेक वेबसाइट मैशेबल द्वारा 2010 में की गई थी, ताकि वैश्विक स्तर पर हमारे संचार, समाचार साझाकरण और व्यवसायों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को पहचाना जा सके और सराहा जा सके। इसे 30 जून 2010 को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को करीब लाना, डिजिटल युग में सोशल नेटवर्क की ताकत का जश्न मनाना है। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करूं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये दिवस विचारों, संस्कृति और व्यापार के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। और रुख करेंगे कार्यक्रम सुरभि के अगले पायदान की ओर। जी हाँ, अगला पायदान होगा पहल, और पहल का जो विषय है वो है फसल बीमा योजना। उस पर भी बातें साझा करूंगी, लेकिन पहले क्यों ना सुन लिया जाए ये गीत। अच्छा चलिए, क्या कहते हैं, पहले बात ही कर लेती हूँ फसल बीमा योजना पर। तो ऐसा

है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल खराब होने पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करना है। फसल बीमा योजना के जो मुख्य लाभ हैं, सस्ता प्रीमियम, किसानों को बहुत ही कम और निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। खरीफ फसल धान मक्का आदि के लिए 2%, रवि फसल गेहूं चना आदि के लिए 1.5%, व्यावसायिक बागवानी फसल के लिए 5%, व्यापक कवरेज, इसमें बुआई से पहले आने वाले जोखिम, खड़ी फसल, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। स्थानीय आपदाओं से बचाव, ओलावृष्टि, भूस्खलन और जल भराव जैसी व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली आपदाओं से भी सुरक्षा मिलती है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग, ड्रोन, स्मार्टफोन और रिमोट सोर्सिंग के जरिए फसल के नुकसान का त्वरित आकलन करके जो दवा होता है उसे दवा दिया जाता है। और क्या होता है कि इसको जो है वो क्लेम करने के लिए भी जल्दी से निपटारा किया जाता है। तो यहाँ क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है और जल्दी से जल्दी आपको त्वरित आकलन करके और क्लेम के लिए जल्दी निपटारा किया जाता है। और अब इसी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, पहल में फसल बीमा योजना से जुड़ी कई सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपसे साझा किया। और अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर।

स्टूडियो की घड़ी में इस समय उछला है 12:15 और 46 सेकंड और ये कार्यक्रम सुरभि रहता है 12 बजे से लेकर 12:20 तक। तो अब जो शेष समय बचा है इस कार्यक्रम में, क्यों ना उस समय में हम सुन ले एक और खूबसूरत सा गीत। अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, फिल्म जब वी मेट से, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम। और अब वो समय हो चला है जबकि मैं कहूं आपसे कि हाँ, आपकी रेडियो 2 सिलेक्शना पर्वत को आज्ञा दीजिए। हमेशा की तरह यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और क्या, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर

0: 31 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोध

0: धन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कोलकाता অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। মিডিয়াম ওয়েভের 297.6 মিটার অর্থাৎ 1000

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में UPI के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने UPI की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि

0: कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Special Intensive Division SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media, Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar said that claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that so far India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. He highlighted the collective responsibility of nations to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. The minister said this while speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi. He underlined the use of digital systems and tools in the transformation of governance in migration.
3: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform, and since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This

0: 5:22 घड़ी की सुई बता रही है इस वक्त यही समय और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज मंगलवार की शाम मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती लेकर आई हूं एक ही फिल्म से में उर्वशी में एक ही फिल्म से में आज हम बात करेंगे पाकीज़ा फिल्म की। 1972 में रिलीज हुई थी ये बेहद खूबसूरत फिल्म पाकीज़ा। जी हाँ, कमल अमरोही के निर्देशन में ये फिल्म आई थी और फिल्म पाकीज़ा में खूबसूरत नरगिस हमें दिखी थी और साथ ही जब भी पाकीज़ा की बात आती है तो बस इस फिल्मों के गीत तो रहते ही हैं साथ में। लेकिन आज हम कार्यक्रम की शुरुआत एक गीत से नहीं बल्कि मीना कुमारी द्वारा वाचित इस कविता से करेंगे जो इस फिल्म का एक अहम हिस्सा भी है। दोस्तों सुनिए, ये आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी एक ही फिल्म से में आज हम बात करेंगे पाकीज़ा की।
1: लेके अंगड़ाई सरे बज़्म बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्माई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

दोस्तों आज कार्यक्रम उर्वशी में एक ही फिल्म से में हम बात कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा की। कमल अमरोही द्वारा लिखित निर्देशित और निर्मित 1972 की ये फिल्म वाकई में एक संगीतमय प्रेम नाटक फिल्म है। फिल्म में मीना कुमारी ने एक मुख्य भूमिका निभाई है और साथ में उनके दिखे हैं राजकुमार और अशोक कुमार भी। फिल्म लखनऊ की रहने वाली तवायब साहिबजान की कहानी है। ट्रेन में सोते समय साहिबजान को एक अजनबी का पत्र मिलता है जिसमें उसकी सुंदरता और खासकर पैरों की प्रशंसा की जाती है। बाद में एक टूटी हुई नाव से निकलकर वो एक तंबू में शरण लेती है और उसे पता चलता है कि तंबू के मालिक सलीम नामक एक वन रक्षक ने वो पत्र लिखा था। साहिबजान और सलीम शादी करने की योजना बनाते हैं जिसे साहिबजान की पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण विवाद उत्पन्न होता है। और दोस्तों कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है और फिल्म एकदम सुपरहिट होती है। जानेंगे पाकीज़ा फिल्म से जुड़ी और भी कुछ रोचक बातें, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। कार्यक्रम उर्वशी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल और इस वक्त इसी फिल्म से हम सुनेंगे एक और गीत परवीन सुल्ताना की आवाज़ में।

दोस्तों आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा की, और पाकीज़ा की जब बात आती है तो इस फिल्म को इसके भव्य और एकदम ह्यूज सेट्स के कारण और उसकी कॉस्ट्यूम्स के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली, और ये इसलिए भी जानी जाती है। इस फिल्म को बनने में बहुत सारा समय लग गया, और ये फिल्म बनी मीना कुमारी की उनके जीवन काल में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म के रूप में भी इसे जाना जाता है, और इसमें उनके अभिनय को उनके करियर के एकदम सर्वश्रेष्ठ अभिनय में से एक माना जाता है। पाकीज़ा को अक्सर भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों की सूची में भी शामिल किया जाता है। इस फिल्म से ही एक और गीत चलो दिलदार चलो आपने सुना इस वक्त, और इस वक्त लता जी की आवाज़ में ही इन्हीं लोगों ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी एक ही फिल्म से, में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा की, आप अपनी दोस्त भारती के संग।

दोस्तों, जब एक बेहद खूबसूरत फिल्म की बात करते हैं तो उस फिल्म की हर बातें ही खूबसूरत होती है। अब पाकीज़ा की ही बात करें जिसे बनने में लगभग 15 वर्ष लग गए। फिल्म शुरू हुई थी बननी 1956 में और जाकर रिलीज हुई 1972 में। इतने ज़्यादा दिन

बाद में सिनेमास्कोप तकनीक आने पर कुछ हिस्से फिर से शूट किए गए। दोस्तों, फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद का निधन फिल्म पूरी होने से पहले हो गया था। बाद में नौशाद ने बैकग्राउंड स्कोर पूरा किया। फिल्म के मूल सिनेमाटोग्राफर जोसेफ वॉशिंग के निधन के बाद कई सिनेमाटोग्राफर्स ने मिलकर इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया और फिल्म रिलीज होने के लगभग 2 महीने बाद ही फिल्म की अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन हो गया, इसलिए इसे उनकी सबसे यादगार और अंतिम रिलीज फिल्मों में गिना जाता है। रिलीज के समय फिल्म को एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बाद में ये 1972 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई और भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक मानी जाने लगी। इस फिल्म का एक और गीत लता मंगेशकर की आवाज में, थाड़े रहियो। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्स पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। साथ हूं मैं आपकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी में एक ही फिल्म से में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा की। फिल्म में एक और गीत, फिल्म का एक और गीत इस वक्त आप सभी के लिए।

दोस्तों कार्यक्रम उर्वशी में मैं थी आपके संग आपकी दोस्त भारती। ठीक 6:10 पर लेकर आऊंगी आपके लिए कार्यक्रम वार्ता। जाते जाते आप सभी के लिए इसी फिल्म से, पाकीज़ा फिल्म से एक और गीत, लता मंगेशकर और संग सहगायक। दोस्तों मुलाकात होगी आपसे कुछ मिनटों में ही आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल में ठीक 6:10 पर।

0: is missing since 23rd of April 2026. Manirul Islam from Post Office Ghuni Police Station Eco Park, District North 24 Paganas, informs that Momtana Parveen, aged about 15 years, 4 feet 9 inches of height, color of skin shallow, mother tongue Bengali, is missing since 1st of June 2026. And finally, Buddhadev Hajra from Police Station Katwa, District East Burdwan, informs that Bishwajit Hajra, aged about 23 years, thin build, height 5 feet 5 inches, color of skin shallow, mother tongue Bengali, is missing since 4th of May 2023. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, Criminal Investigation Department, West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost persons. Now this evening's program highlight. At 6:10 p.m. from our station, you will listen to the Hindi program. At 6:20 from Delhi, you will listen to news in Sanskrit. At 6:30 on the Sanchaita channel, you will listen to the commentary in Hindi and English of ICC Women's T20 Cricket World Cup first semi-final. On the app simultaneously, you will be listening to the remaining part of the Hindi program at 6:30. From our station at 7:10, you will listen to Adhunik Gaan by Rajashree Banerjee. Our Hindi Karyakram Darpan at 7:30 p.m. Film music at 8 o'clock. Sports news in Bengali from our station at 8:10 p.m. followed by mixed melodies at 8:15. At 10:30 p.m. from our station, you will listen to the Western music program, and at 11:10, Hindi film songs. Those were the programs to be broadcast on this channel later this evening. This is the Sanchaita channel of Akashvani, Kolkata. And now please stand by for the news to be relayed from Delhi in a short while from now.
1: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक

0: शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said the collective responsibility of nations is to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. He said India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform.
3: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform. And since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
2: President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047. Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged the students to become job creators rather than job seekers. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media, Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok

दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और बार। 6:10 और 26 सेकंड हुआ है इस वक्त समय और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज की शाम मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती और इस वक्त जो कार्यक्रम आप सुनेंगे उसका नाम है वार्ता। दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ एक ने उन्होंने कहा है कि बुक्स आर द मिरर्स ऑफ द सोल। पुस्तकें जहां एक अच्छी मित्र होती है वहीं एक आत्मा का आईना भी होती है और आज इन्हीं पुस्तकों के महत्व के बारे में हम बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम वार्ता में। दोस्तों मानव जीवन में पुस्तकों का स्थान बहुत ही ज्यादा अहम है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक पुस्तकें जहां ज्ञान संस्कृति सभ्यता नैतिक मूल्यों की वाहक रही है तो वहीं मनुष्य के बौद्धिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास पुस्तकों के माध्यम से ही संभव हो पाया है। यदि पुस्तकें ना होती तो मानव सभ्यता का विकास इस गति से कभी नहीं हो पाता। पुस्तकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का संरक्षण किया है और उसे आगे पहुंचाया है। मुझे याद है जब मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय में जाती थी तब जब मैं पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों को बोरो करती थी पढ़ने के लिए तो अक्सर मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था

कि ये पुस्तक लास्ट कब ली गई थी। और ऐसी कई पुस्तकें हैं जो स्वाधीनता के पहले, भारत के स्वाधीनता से पहले शायद से किसी ने पढ़ी होगी, और उसे मैं पढ़ रही हूँ। और वो स्टैंप लगे होते थे, एक अंदर से एक अलग रोमांच आता था। जी हाँ, पुस्तकें वाकई में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को कैसे ज्ञान को पहुंचाती है हर पीढ़ी तक। और आज पुस्तकों के महत्व के बारे में ही हम हमारे खास कार्यक्रम वार्ता में आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, पुस्तकों का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। चाहे विद्यार्थी के लिए पुस्तकें सफलता की कुंजी होती है, तो वहीं पर शिक्षक के लिए ये ज्ञान का माध्यम होती है, वैज्ञानिक के लिए अनुसंधान का आधार होती है, तो साहित्यकार के लिए उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का साधन होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों से लाभ पहुंचा पाता है। और पुस्तकें ही हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति को भी विकसित करती है। नियमित पुस्तक पठन से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, भाषा भी समृद्ध होती है, तथा व्यक्तित्व में एक अलग निखार आता है। पुस्तकें ज्ञान का अथाह सागर है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन या फिर कला, हर विषय ज्ञान पुस्तक में सुरक्षित रहती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करता है, वो समय के साथ स्वयं को निरंतर विकसित करता रहता है। आज हम जिन महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और साहित्यकारों के विचारों को जानते हैं, वो पुस्तकों के कारण ही संभव हुआ है। यदि उनके विचार लिखित रूप में सुरक्षित ना होते, तो मानव समाज उनसे कभी भी फायदा नहीं पहुंचा पाता। अच्छी पुस्तकें मनुष्य के सबसे विश्वसनीय मित्र होते हैं। जब मनुष्य अकेला होता है, तब पुस्तकें ही उसका साथ देती है। वे कभी शिकायत नहीं करती और ना किसी प्रकार का स्वार्थ रखती हैं। जब भी हम उन्हें खोलते हैं, तो हमें ही उनसे फायदा होता है, नए ज्ञान का, नई प्रेरणा का। एक अच्छी पुस्तक हमें निराशा से जहां आशा की ओर ले जाती है, तो वहीं अज्ञान से ज्ञान की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाने का मार्ग भी दिखाती है। महापुरुषों की जीवनियां तथा प्रेरणादायक पुस्तकें हमें सत्य, ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन, त्याग और सेवा का महत्व सिखाती है। वे हमारे चरित्र का निर्माण करती है तथा हमें एक आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती है। इतिहास गवाह है कि अनेक महान व्यक्तियों ने पुस्तकों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। पुस्तकें हमें जीवन की कठिनाइयों को सामना करने के लिए भी साहस प्रदान करती है। दोस्तों, कहानी, कविता, उपन्यास और नाटक जैसी साहित्यिक पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति को जहां विकसित करती है, तो वहीं हमें विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और विचारों से परिचित भी कराती है। नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा उसकी भाषा जो होती है वो प्रभावशाली होती है, उसका शब्द भंडार बढ़ता है तथा लेखन और बोलने की क्षमता में सुधार होता है। विद्यार्थी यदि प्रतिदिन कुछ समय पुस्तक पाठन ना करे, तो उनकी भाषा, व्याकरण तथा अभिव्यक्ति में उल्लेखनीय सुधार होता है। पुस्तकें स्वस्थ मनोरंजन का भी उत्कृष्ट माध्यम है। हास्य, रोमांच, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, उपन्यास तथा बाल साहित्य हमें आनंद प्रदान करते हैं। पुस्तकों का मनोरंजन जहां ज्ञान वर्धक होता है, तो वहीं कई बार अन्य मनोरंजन के साथ केवल समय व्यतीत करने तक सीमित रह जाते हैं। आज के डिजिटल युग में पुस्तकों का महत्व और भी बढ़ गया है। जहां इंटरनेट, मोबाइल और ई पुस्तकों का युग है, जानकारी प्राप्त करने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध है, फिर भी मुद्रित पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। पुस्तक पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है तथा विषय को गहराई से समझने में सहायता मिलती है। ई पुस्तकों ने ज्ञान को अधिक सुलभ बनाया है, परंतु कागज की

पुस्तक पढ़ने का आनंद और अनुभव आज भी अद्वितीय है। इसलिए दोनों का संतुलित उपयोग जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। हर पुस्तक उपयोगी नहीं होती, इसलिए हमें सदैव अच्छी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पुस्तकों का चयन करना चाहिए। ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करें, नैतिक मूल्यों को मजबूत करें तथा समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएं। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें सफलता का आधार है। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ सामान्य ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ने से उनका सर्वांगीण विकास होता है। निसंदेह पुस्तक मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है। विज्ञान संस्कृति नैतिकता और सभ्यता की संरक्षक है। एक अच्छी पुस्तक जीवन बदलने की शक्ति रखती है। हमें प्रतिदिन कुछ समय पुस्तक पठन के लिए अवश्य निकालना चाहिए तथा बच्चों में भी पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। यदि समाज में पुस्तक पठन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए तो एक शिक्षित जागरूक नैतिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण संभव है। दोस्तों, एक महान विचारक ने कहा है, पुस्तकें वह प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर करती है। तो क्यों हम इसे दूर रखें? प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकों को अपना सच्चा मित्र बनाकर ज्ञान, संस्कार और सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, वार्ता में आज हमने पुस्तकों के महत्व पर बात की और ठीक 6:30 पर आप हमसे जुड़ेंगे न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गुल गुलशन और इस वक्त संस्कृत में समाचार।

दोस्तों 6:30 और 11 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल और इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपको बता दें कि गुल गुलशन कार्यक्रम जिसे आप सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्मों से बेहद खूबसूरत कुछ ऐसे गीत जो कि प्रभावित होते हैं गज़ल शायरी या फिर कवाली या फिर क्षेत्रीय धुनों पर। दोस्तों इस वक्त हम सुनेंगे सोनू निगम की आवाज़ में तमन्ना फिल्म से ये गीत जिसके बोल हैं निदा फाजली के, संगीत है अनु मलिक का।

दोस्तों, कार्यक्रम गुलगुलशन में अगला गीत आप सुनेंगे श्रेया घोषाल और विशाल मादे की आवाज में फिल्म कलंक से। आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम गुलगुलशन सिर्फ और सिर्फ न्यूज ऑन AIR ऐप पर।

परंपरा टंडन की आवाज ने आवाज में आपने सुना ये फिल्म दो पत्ती से ये गीत और इस वक्त पंकज उधास की आवाज में एक बेहद खूबसूरत गजल आप सभी के लिए।

दोस्तों, कार्यक्रम गुल गुलशन के इस वक्त हम आखिरी गीत की ओर रुख करेंगे और ठीक मुलाकात होगी मेरी फिर से आपकी एक और बार आज ही शाम 7:30 पर। लेकर आऊंगी आपके लिए कार्यक्रम दर्पण और जाते जाते आप सभी के लिए कुणाल गांजावाल और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत कार्यक्रम गुल गुलशन। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमें इस वक्त न्यूज ऑन AIR ऐप पर, आकाशवाणी कोलकाता का। ये है संचयिता चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइव

बॉय की मदद से सभी छह मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे, ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल में। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त भारती को। और दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, और मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। और कार्यक्रम में इस वक्त हम शुरू करेंगे दर्पण, और दर्पण में एक नज़र में आज हम दो खास दिनों की बात करेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। हर साल इसी दिन यानी 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस। इस दिन का उद्देश्य लोगों को एस्ट्रॉइड्स के बारे में जागरूक करना तथा पृथ्वी पर उनके प्रभाव के प्रति सचेत करना होता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स सौर मंडल के छोटे छोटे पथरीले पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित घेरे में पाए जाते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स अपनी कक्षा बदलकर पृथ्वी के निकट भी आ जाते हैं। दोस्तों 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र के तुगुनसुका में एक विशाल एस्ट्रॉइड या उल्का पिंड के विस्फोट से भारी विनाश हुआ था। इसी घटना की स्मृति में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है। इस अवसर पर वैज्ञानिक लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान, एस्ट्रॉइड्स की निगरानी और पृथ्वी की सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों यह दिन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम अंतरिक्ष से आने

वाले संभावित खतरों का समय रहते पता लगा सकते हैं। हमें वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना चाहिए और अंतरिक्ष के प्रति अपनी जिज्ञासा एवं जागरूकता बढ़ानी चाहिए। दूसरे दर्पण के दूसरे दिवस की बात करें, यानी एक नज़र के तहत आज जो दूसरा दिन हम मना रहे हैं, खास दिन, वो है विश्व सोशल मीडिया दिवस। भाई ये तो एकदम पसंदीदा दिन होगा आप लोगों का। हर साल इसी दिन यानी 30 जून को मनाया जाता है ये खास दिन। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सोशल मीडिया के महत्व, उसके पॉजिटिव उपयोग यानी सकारात्मक उपयोग तथा उससे जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही क्षणों में जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया संचार का एक प्रभावी माध्यम भी है। इसके द्वारा हम समाचार प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा व्यवसाय और रोजगार के लिए एक नए अवसर को प्रदान करने में खुद को सक्षम भी बना सकते हैं। विद्यार्थी जहां ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, शैक्षिक वीडियो और विभिन्न विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। जहां सोशल मीडिया के अनेक फायदे हैं, तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसका ज्यादा उपयोग समय की बर्बादी, पढ़ाई में बाधा, मानसिक तनाव और लत का कारण बन जाता है। इसके अलावा झूठी खबरें यानी फेक न्यूज, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और निजी जानकारी का दुरुपयोग भी गंभीर समस्याएं पैदा करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। विश्व सोशल मीडिया दिवस हमें यह सिखाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक संवाद के लिए किया जाए। यदि हम इसका संतुलित, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करें तो ये समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए हमें सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए और इसके दुष्प्रभावों में से स्वयं और दूसरों को बचाने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, कार्यक्रम में इस वक्त एक गीत। आप हैं अपनी दोस्त भारती के संग।

आशाओं के दीप जहां बुझते नहीं है, जो चलते हैं हौसलों के साथ हर डगर और मंजिलें उन्हें ही मिलती है, यही विश्वास देते हैं ये सपने। आज हम फिर छिड़ी बात में इन्हीं सपनों के बारे में बात करेंगे। जीवन में इंसान अगर सपने नहीं देखता तो क्या देखेगा, और अगर सपने देखेगा तो फिर उन्हीं को पूरा करेगा और उन्हीं को पूरा करने की ललक उसे जिंदा भी रखेगी। सपने केवल रात में ही नहीं देखे जाते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य, कुछ इच्छाएं और कुछ आकांक्षाएं भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, तो कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, या फिर कुछ और, या फिर जीवन में किसी को पाने का सपना भी रखता है। सपने हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सपने देखना ही खाली नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए भाई कठिन परिश्रम, सही वक्त पर सही काम, अनुशासन और कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वही अपने सपनों को साकार कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त कुछ सपनों से भरे नैना की बात करेंगे शंकर महादेवन।

दोस्तों आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम दर्पण सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल में, जिसे आप सुन रहे थे न्यूज ऑन AIR ऐप पर। मैं थी आपके संग आपकी दोस्त भारती। कार्यक्रम दर्पण में इस वक्त सुनेंगे आखिरी गीत और मुलाकात होगी आपसे मेरी फिर किसी सुबह या शाम। सुनते रहिए, साथ रहिए आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। और ठीक मेरे जाते ही 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म म्यूजिक। सुनते रहिए इस वक्त लता मंगेशकर और अभिजीत की आवाज़ में परंपरा फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: Facilitating mobility.
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।

0: समाचार दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना

0: man kann.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDGs, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तैयार किया। और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए। और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा असमानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो, उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए। उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सके, सबसे बड़ी जरूरत थी। इस देश में लैंगिक समानता,
2: बिल्कुल
3: जेंडर इक्वलिटी, जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता, प्रवीणता, काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है। और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है। और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
2: बिल्कुल, आपने जैसे कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन पैमानों को रखा जाता है और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
3: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं, ये

0: 100% कवरेज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को यह सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर से जिन्हें जरूरत है। और यह 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है। जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा, सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है। IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह ये है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा। अब सोचिए, इस देश में 2/3 आबादी को, यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की, उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है, यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं, इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे, उसी को देखते हुआ ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक हैं या संकेतक हैं वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की, तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है, जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918 और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की, उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी, वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी, वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है। तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
0: देखिए, बेरोजगारी का घटना, इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही है, सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था EPF में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। एम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका PF कटता होगा, यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी, उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, PF कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका PF कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और वो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना PF कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं या आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप PF कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका PF कटने लगा। तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई PF तो नहीं कटता। आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेकर कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उस

0: रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं, और खेतिहर लोगों के खासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था, उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
0: देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना। हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए, यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है, उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में। जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है, यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती, आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दैन की जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
1: बिल्कुल, तो कई और संकेतक हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था, जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
0: इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरे दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से आ रहा है, सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
1: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
0: पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है। हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है, कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था। कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है। सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ है।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब, कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता बहाल रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश गैर कानूनी घोषित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया। ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने उभरते खतरों से निपटने के लिए 298 अरब पाउंड की रक्षा निवेश योजना प्रस्तुत की। और फीफा विश्व कप में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से न्यूयॉर्क में होगा, जबकि आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से टेक्सास में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमरीका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमरीका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। यह फैसला दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की किसी प्रमुख नीतिगत पहल को रोका है। इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीतियों के महत्वपूर्ण हिस्सों को अमान्य घोषित किया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन गतिशीलता मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी

0: अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी दान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में अफगानिस्तान में 10 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इनमें 800 से अधिक अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की मीडिया एजेंसी के अनुसार ये हमले खोस्त, पक्तिया, पक्तिका, कुनार, काबुल, नंगरहार और कंधार सहित कई प्रांतों पर किए गए। इन हमलों में आवासीय मकान, अस्पताल, स्कूल और विश्वविद्यालय सहित नागरिक अवसंरचनाओं को भी निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में
2: संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 लोग घायल हुए। अफगान मिशन ने कहा कि ये हमले अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मिशन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर नजर रखने और अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से तुरंत संघर्ष रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। यूरोपीय संघ ने भी संयम बरतने और तनाव कम करने का आग्रह किया। उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हर हाल में पालन होना चाहिए। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने देश की ड्रोन युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रक्षा योजना की शुरुआत की है। श्री स्टार्मर ने बताया कि ये रक्षा निवेश योजना अगले 4 वर्षों में 298 अरब पाउंड की होगी। इसमें 15 अरब पाउंड की अतिरिक्त धनराशि भी शामिल है। श्री स्टार्मर ने कहा कि ये योजना सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता बहाल रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश गैर कानूनी घोषित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया। ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उभरते खतरों से निपटने के लिए 298 अरब पाउंड की रक्षा निवेश योजना प्रस्तुत की और फीफा विश्व कप में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से न्यूयॉर्क में होगा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री

0: को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed